0: man. May I have your attention, please? The show.
1: Ja, ja, ja, ja. Het aftellen is begonnen. Het aftellen is begonnen. Het gezelligste event van het jaar komt eraan, Brasavers. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in het GIA Event Center Den Haag. Koop je tickets nu voordelig online via brasavers.nl. Aan de deur betaal je meer, Tujane toch? Dus bestel ze direct online. Don't miss this, be there. En alvast een dikke, garm garm, warme brasa. उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोड़ खाती है और हाँ तू मांगे हैगा विल जाए बरीखी स्टूर नार ओंसे स्टूडियो हाँ विल जाए बरीखी स्टूर नार ओंसे स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरीख नार 020-363-0808 दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Get your tickets now via brazafest.nl. Koop je tickets via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now online via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिसे स्टेमें इन एन अनवर्गेटलिके शो 19 सितंबर थिएटर द मीरवाड में मौसमी ओब्रॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका दत्तजीन एंड निजाम वागी दुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मीरवाड.nl

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net। Warung Tutti, Brasa Fest, wordt nog lekkerder met Warung Tutti. Geniet van Salto, knapper gebakken banana, Tillo, goed gevulde broodjes en heerlijke specialiteiten van de barbecue. Voor iedere trek is er volop keuze. Kom langs en proef en geniet. See you at Warung Tutti op Brasa Fest. GIA Event Center, zaterdag 29 en zondag 30 augustus Den Haag mee, Brasa Fest met Warung Tutti.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से कृष्णा कल्लू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ईफ अंतखियार और छोटा भाई कृष्णा कल्लू का बड़ा भाई छोटकी मरिस्का कल्लू का बड़को कुवेकी कल्लू और करिश्मा कल्लू के दादा डेमियन ओरी का ददवा ससुर अम्स्टरडम न्यूस्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में, और जो कि पहले सूरीनाम कमवैन का रहने वाला था। अलमेर से परिवार कृष्णा कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ईफ अंतखियार और छोटा भाई श्रीमान कृष्णा कल्लू का बड़ा भाई छोटकी मरिस्का कल्लू का बड़को विकी कल्लू और करिश्मा कल्लू के दादा डेमियन ओरी का ददवा ससुर अम्स्टरडम न्यूस्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले कोमवैन का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदाख ओम फिर उर किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार कल्लू के दुख में शामिल है।

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द एएमवीबी। Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo nu 40 minuten vertraging.

Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. और तू जाने तो दिल क्या करे, दिल कुछ ना कर सकेगा। तू ना जाने कब कैसे कहाँ किस जगह पर किसी से प्यार हो जाए। ये वही तो नॉइज़।

यू आर उजाला रेडियो, ये है हर एक काम काज के लिए चेक ऑन वेबसाइट ujala.nl एंड जो भी काम काज आपको दिलाना है स्टूडियो ईमेल info@ujala.nl। मोई से रहिए।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांडे ज़ादा दिन एंड ज़ोंडा 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाथू मोह से सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दिनाक में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओ कमेज़ और ब्राज़ा फेस्ट

0: रखने को। उजाला रेडियो के साथ म्यूजिक नॉन स्टॉप फ्लो चलता रहे। हाँ, आप हमारे साथ देते रहिए।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

Live vanuit de Hoogstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अभी शुरू होने वाला है उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मेरा शो, जरूर आप सुने ना जो हेडलाइंस ऑन वंदाग। आज का समाचार आने वाले दिनों के बारे में समाचार, नतुलों के लुख्त ऑन वेब में आनंद चंद्रिका सिंह जो इन कॉफी चाय मेरा शो।

Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. और तू जाने तो दिल क्या करे, दिल कुछ ना कर सकेगा। तू ना जाने कब कैसे कहाँ किस जगह पर किसी से प्यार हो जाए। ये वेट नॉइज़।

You are Ujala Radio. ये हर एक कामकाज के लिए check on the website ujala.nl and जो भी कामकाज आपको दिलाना है studio email na info@ujala.nl. मोइस रहिए.

6:18 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, दैट इज 18 मिनट ओवर द क्लॉक फन सेट्स। ये है उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं। आज बुधवार है, 26 तारीख अगस्त, इस महीने का आखिरी बुधवार मेरे प्यारे सुनने वालों, और कुछ घंटे के लिए आपका सेवा हम फिर एक बार करने चले आए हैं यहाँ स्टूडियो रतनराम से। रात्रि में 9 बजे तक हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और आज प्यारे सुनने वालों, अनु मलिक जी का कुछ हफ्तों से प्रोग्राम हम सजाते आए हैं, आज इनका आखिरी प्रोग्राम हम सजाएंगे। हालांकि इनकी और भी खूबसूरत गाने हैं प्लेलिस्ट में शामिल, और इनके 2-4 प्रोग्राम और भी बना सकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते नए महीना सितंबर शुरू हो रहे हैं, तो मैंने सोचा इतने सारे कलाकार का प्रोग्राम बनाने हैं तो हमें आगे बढ़ना है। तो तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों, आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सभी को तो मालूम है कि अगर बातें करना चाहोगे तो आप स्टूडियो में अवश्य हमेशा जब भी मैं आता हूं व्हाट्सएप के जरिए भी बातें आप सब कर सकते हैं। 020-363-9000, जहां पर आपको ऐप करना है। और यह दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों, फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी, इंफॉर्मेशन के वास्ते है, तो आप तार कर सकते हो दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे से शाम में 3 बजे तक, और वो भी 020-409-0807, या तो आप लगातार मेल के जरिए भी अपना कामकाज दिलवा सकते हैं। और उसके लिए आप 24 घंटे 7 दिन जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े आप ऐप कर सकते हैं, किसी भी वक्त, किसी भी पल और किसी भी दिन। info@ujala.nl। अनवर सरदार मलिक जी मेरे प्यारे सुनने वालों, ये आदमी एक मास्टर है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपना म्यूजिक दिए है, बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग्स का म्यूजिक डायरेक्टर है ये, और आप सुन चुके हैं। कोशिश करूंगा आज फिर एक बार एक छोटा सा झलक आपको फिर सुनाने का। और आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों, वहां उस गीत की ओर आपको हम ले चलते हैं, एक 2004 का फिल्म जिसका नाम है मैं हूं ना, और मैं हूं ना का टाइटल सॉन्ग जो जावेद अख्तर जी ने लिखा और जो मिलकर गाए हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल। मैं पेश करने जा रहा हूं आज का ओपनिंग सिलेक्शन हियर ऑन यू आर।

किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। सुनो निगम और श्रेया घोषाल की खूबसूरत आवाजों में जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ गीत ये दोनों ने मिलकर गाए हैं। अनु मल्लिक जिसका हम आज प्रोग्राम आखिरी सजा रहे हैं इनकी साज और संगीत पर। ये था फिल्म मैं हूं ना 2004 का मूवी का टाइटल सॉन्ग। एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और या कहिए प्रोड्यूसर्स गौरी खान और शाहरुख खान है और डायरेक्टर फारा खान। शाहरुख खान का ये फिल्म सुष्मिता सेन के साथ इन्होंने काम किया है और जिसमें सैयद खान भी है, अमृता राव, सुनील शेट्टी, किरण खैर, सतीश बोमानी रानी, राखी सावन, कबीर बेदी और ना जाने कितने और लोग। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, फिर एक बार आप सभी को हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। मैं हूं रतन और आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर्स है। बैक टू द फ्यूचर आज पेश कर रहा हूं फिर एक बार रात्रि में 9 बजे तक और आज आखिरी प्रोग्राम है अनु मलिक जी का द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इनका हमने कोशिश किया आप तक पहुंचा देने के लिए ये भी उजाला रेडियो के जरिए। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने एंजॉय की है उसी तरह आज भी इनका जो आखिरी प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आप भरपूर सुनते वक्त भी एंजॉय करेंगे। एक गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक फिल्म जिसका ये भी टाइटल सॉन्ग है और फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी नगमा मैं पेश करने जा रहा हूँ। नवाब आरजू जी का लिखा हुआ और नवाब आरजू का लिखा हुआ ये गीत द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू अब की बार अलका याग्निक के साथ मिलकर गाएंगे अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। और हम बात कर रहे हैं टाइटल सॉन्ग ऑफ द मूवी बाजीगर जो 1993 का है नेहंतिन द्रियन नेहंतर। मेरा दिल था अकेला

बाजीगर ओ बाजीगर, मेरा दिल था अकेला, तूने खेल कैसा खेला। फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग मिलकर गाए हैं अलका याग्निक और कुमार सानू, वो भी अन्नू मल्लिक के साथ। और संगीत पर नवाब आरजू का लिखा हुआ गीत, मेरे प्यारे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी बाजीगर जो हमने निकाले हैं, 1993 का मूवी है, नेहतिन द्रिय नेहत, अब्बास और मुस्तान बर्मावाला, इन दोनों का डायरेक्शन है, और शाहरुख खान का जो शिल्पा शेट्टी राखी और दलीप तहिल, इन सभी का एक फिल्म है। मेरे प्यारे सुन लो, 8 मिनट तो गुजर चुके हैं सरे 6 बजकर। आपको मालूम रहे कि हर एक घंटे पर आप नटोल इश्तिहारे सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हाल क्या है और सड़क का भी क्या हाल है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी मुझे कहना पड़े है कि इश्तिहारों के बाद 7 बजे तो थोड़ा सा मृत्यु समाचार है प्रोग्राम में, मौत की खबर है जो पुकारा जाएगा हियर ऑन यूआर उजाला रेडियो पर। बरिख्त फन ओवरलैड ना द कमर्शियल ब्रेक फन सेव यूर हियर ऑफ यूआर। तो तुरंत ले चलते आपको अगले गीत की ओर, एक नगमा, डांस डिस्को रॉक सॉन्ग, समीर का लिखा हुआ ये एक नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत जो है मिलकर गाएंगे वैसे तो उदित नारायण और अलका याग्निक, और साथ देंगे शहीद कपूर और करीना कपूर भी साथ देंगे। फिल्म का नाम है फिदा और गीत का बोल आजा वे माही वे सोनिया। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय दिस सॉन्ग।

या अजावे माही वे बल्ले बल्ले ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, एक मैं हूं एक तू है, आरजू भी है। उदित नारायण और अलका याग्निक और साथ दे रहे थे करीना कपूर और शहीद कपूर जी। समीर का लिखा हुआ ये एक नगमा सभी ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मल्लिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं इनकी साज और संगीत पर, फिल्म का नाम फिदा मेरे प्यारे सुनने वालों, 2004 का फिल्म फिदा, जिसका डायरेक्टर कैन घोष और फरदीन खान, करीना कपूर, शहीद कपूर, किम शर्मा, इन सभी का एक फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम रहे कि कल मोरखनाफंत जो इस महीने का आखिरी दोनों दिन होंगे, आखिरी बृहस्पतिवार सेवनंतविंदक अगस्त आपका सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज, और वो भी रात्रि में 8 बजे से 11 बजे, 3 घंटे लाइफ एंड आर की वार के स्टूडियो रोटरडम से पेश करने वाला हूँ। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर आप सभी मेरा साथ भी देंगे कल। इंदवर साहब जी, देवखोली और राहत इंदौरी, इन तीनों का मिलन और गीत जो लिखा गया है, निकालेंगे फिल्म खुद्दार। खुद्दार एक फिल्म है 1994 का, नीहंत अन्नू मलिक जी के साज और संगीत पर कुमार सानू और अलका याग्निक की तेरे दीवाने ने, तेरे दीवाने ने तेरा मोहब्बत नाम रखा है।

दीवाने ने तेरा नाम मोहब्बत रखा है। कुमार सानू अलका याग्निक मिलकर गीत गाए हैं। इंदवर देवखोली और राहत इंदौरी जी का लिखा हुआ एक नगमा फ्रॉम द मूवी खुद्दार। मेरे प्यारे सुनने वालों, अन्नू मल्लिक की साज और संगीत पर खुद्दार का ये जो फिल्म है नीखंत इनफिर नीखंत का 1994 इकबाल दुरानी ने डायरेक्ट किया है और गोविंदा करिश्मा कपूर और कादर खान का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोल, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ। शान और चित्रा की आवाज में आप सुनेंगे देवखोली का लिखा हुआ गीत फ्रॉम द मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ अट्वे देव संतेंद्री। फिल्म सूरज भटिया जी ने डायरेक्ट किया है और ऋतिक रोशन करीना कपूर अभिषेक बच्चन का फिल्म। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनोल आप सुनेंगे इश्तिहारे और तमाम सूचनाओं के बाद भी मौत की खबरें भी है जो पुकारा जाएगा ही रविवार। एंड द मेनी कर्वियर्स हु रोंट क्वाटो फॉर सेफ। ठीक है, स्टे ट्यून, एंजॉय।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ैफ़न तख़यार और श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता लड़कन के नाना अम्स्टरडम न्यूस्लोटन का रहने वाला श्रीमान मणिराम कल्लू की मृत्यु अम्स्टरडम के ओंजे लीफ फ्रावखास्टहुस वेस्ट में हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सुरीनाम कमवेन का रहने वाला था। अम्स्टरडम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल के आयु में अख्तन ज़ैफ़न तख़यार और श्रीमती निर्मला कल्लू का पति लड़कन सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता लड़कन के नाना अम्स्टरडम न्यूस्लोटन का रहने वाला श्रीमान मणिराम कल्लू की मृत्यु हो गई है। मनी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सुरीनाम में पहले कमवेन का रहने वाला था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल बुध के रात में कल बीफे दोंदरदाग के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदखानस्तान्द 4 यूर किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार फ्रजोरखिंग परिवार कल्लू के दुख में शामिल है।

मोहम्मद असीज और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजें। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत ये दोनों ने मिलकर गाए हैं। अन्नू मलिक जिसका हम प्रोग्राम सजा रहे हैं बैक टू द फ्यूचर, अन्नू मलिक जी का आखिरी प्रोग्राम आज पेश कर रहा हूँ हीरो ऑन यूआर। इनकी साज और संगीत पर दोनों मिलकर गीत गाए हैं। फिल्म का नाम दूध का कर्ज और मूवी 1990 का है। निहति निहंत अशोक गायकवाड़ ने तैयार किया है। मेरे प्यारे सिनेवालो ऑफिस गायकवाड़, हाँ जी अशोक गायकवाड़ इन्होंने डायरेक्ट किया है और जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, वर्षा उसगांवकर, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, तोमेल्तर, सदाशिव, अमरपुरकर, रजा मुराद, गोगार कपूर, गुलशन ग्रोवर का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो पर आप चुन हैं। मेरे प्यारे सुनने वालों, 7 मिनट बाकी है साढ़े सात बजने में, या 7:04 फन हालफ आख हो रहे हैं स्टूडियो का तेज, और स्टूडियो रोहतनाम से प्रोग्राम सजाया जा रहा है फिर एक बार आप सभी के खिदमत में। बैक टू द फ्यूचर आज आखिरी बार कुछ हिट सॉन्ग्स अन्नू मलिक जिसका संगीतकार है सेवा में पेश कर रहा हूं। अगले हफ्ते एक बहुत ही बड़े कलाकार का प्रोग्राम हम सजाने वाले हैं और देखते हैं उनका एक या दो जरूर से जरूर प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे, लेकिन वो कौन है फिलहाल तो हम कभी बताते नहीं। ब्लाइफ तालिन तो फरासिंग एंड ऑफ द डाक सेल्फ हम सभी को ऐलान कर देता हूं कि कौन है वो कलाकार जिसका प्रोग्राम हम सजाने वाले हैं। अगले मूवी का टाइटल सॉन्ग भी हम पेश करने जाएंगे। काफी कुछ टाइटल सॉन्ग पेश किया है, ये भी एक टाइटल सॉन्ग है, समीर का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग है। मेरे प्यारे सुनने वालों, और मिलकर गीत गाएंगे बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक। अन्नू मलिक का लिखा हुआ नगमा है कि रग रग में इस तरह तू समाने लगा। 2001 का मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके से नगमा देखो निकाल कर पेश करता हूं। Virtual DJ

रग रग में इस तरह तू समाने लगा। चोरी चोरी चुपके चुपके और फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का टाइटल सॉन्ग भी ये रहा नगमा। समीर का लिखा हुआ और जो मिलकर गाए हैं अनु मलिक, जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं बैक टू द फ्यूचर में, मिलकर गाए हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो। चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म है मेरे प्यारे सिने वालों 2001 का। ट्वी रोशनी ये भी अब्बास और मुस्तान बर्मा वाला ने डायरेक्ट किया है, और सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति सिंटा, अमरीश पुरी, जॉनी लेवर, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जल्लाल, दलीप ताहिल, दीप्ति भटनागर और कौन है रजक खान का एक फिल्म। 3 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी सरे 7 बजकर। फिर एक बार आप सभी को हम कह देता हूं कि कल रात्रि मोरखन आफंत, जो इस महीने का आखिरी दोंदरदाह आफंत, आखिरी दोंदरदाह और आखिरी कुछ घंटे जो बचेंगे, 8 से 11 बजे रात्रि में सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। फिर एक बार ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और डर भरे नगमाएं, और कल का प्रोग्राम बहुत स्पेशल होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। स्पेशल प्रोग्राम, अलग सा प्रोग्राम हम बनाएंगे, और उसके लिए एक जबरदस्त भी कारण है, और क्या कारण है जानने वाले तो जान गए होंगे और समझने वाले तो समझ गए होंगे, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। त्रिवीर लंग फुल पैक एंटरटेनमेंट दिल की आवाज यूआर के स्टूडियो रोहतनाम से कल हम पेश करने वाले हैं एनत साल अनमोल प्रोग्राम साइन दत्काने की न्यू अल्फास फर्टेलर एंड 8 बजे रात्रि से 3 घंटे लगातार हम बनाएंगे वो खूबसूरत प्रोग्राम, जो अलग प्रोग्राम रहेंगे कल रात्रि को। एंड नतुलक बैनेकर सातदा हाजी सातदा हावंत, वैसे तो ब्रासा मेला फेस्ट उजाला रेडियो का दनहाग में होंगे और मैं यहाँ स्टूडियो रतनाम में, तो हम और लॉयड मिलकर कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, लॉयड फनॉयड लोकाची एंड इक फनॉयड स्टूडियो, आपको फुल पैक एंटरटेनमेंट हम देंगे यहाँ रेडियो के जरिए। तो शनिवार रात्रि में 7 बजे से 12 बजे हम रहेंगे एंड कान से दत लॉयड वट एर्डर इस दत वेट इक नीत मैं इन गफाल टाइन इज मैन आउटस्टैंडिंग नाव इधर के ना लॉयड टू एंड को मुतरख सैटरडे नाइट फीवर आने वाले शनिवार, जो इस महीने का आखिरी है, पेश करने वाला हूँ। एंड सोनक बैनिक सेल्फ दन ऑफ द उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन मेरे प्यारे सुनने वालों, जी हाँ, इवेंट सेंटर दनहाग में जो रचाया जाएगा आने वाले शनिवार और सोनक 30 अगस्त। टिकटें हम ना जाने कि कितना टिकट अब है, अर्ली बर्ड वाला जोन रहा कि पिकाएंगे, जिस तक मुझे सेल्फ ही फैक्ट को www.brassafest.nl। 2 बजे से, हाँ जी 2 बजे से गाने दौरे दार ओपन एंड बिगिंस द फेस फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली इवेंट और बहुत सारे बॉलीवुड्स रहेंगे, बॉलीवुड्स 5।

बंद हूं तू से जो एक बात कही थी मैंने। कुमार सानू की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, कटिल शफाई जी का लिखा हुआ खूबसूरत गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं अनु मलिक के साज और संगीत पर। 1993 तक का फिल्म सर से हमने नगमा को निकाले। महेश भज्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें नाजीरुद्दीन शाह, परेश रावल, अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट ने काम किया है। इन सभी के अलावा मैं देखता हूँ गुलशन ग्रोवर भी है, महेश आनंद जी, मुश्ताक खान, कुणाल खेमू और अवतार गिल। वक्त तो रफ्तार से निकल जा रहा है आगे मेरे प्यारे सिने वालों, और घड़ी की तरफ अगर मैं देखूं और गाने की लंबाई तो दो नगमाएं हम आप तक पेश कर पाएंगे इस घंटे में, उसके बाद में हम बढ़ चलेंगे 8 बजे के ब्रेक की ओर। ले चलते हैं आपको एक फिल्म जिसका नाम है सोल्जर, और सोल्जर जो है मेरे प्यारे सिने वालों 1998 का एक फिल्म है। समीर का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूँ और अनु मलिक के साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे। वंस अगेन कुमार सानू, अब की बार अलका जी के साथ ये नगमा।

सूजा सूजा मीठी बातें बोलकर दिल मेरा चुरा ले गया। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गीत, अन्नू मल्लिक की साज और संगीत पर ये दोनों ने गीत मिलकर गाए हैं। और फिल्म 1998 का है, नीहती नाख्त नीहत, फिल्म का नाम भी सोल्जर है। अब्बास और मुस्तान बर्मावाला का डायरेक्टर डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें बॉबी डेओल, प्रीति सिंटा इन दोनों ने काम किया है। हम फिर सेवा में कुमार सानू और अलका याग्निक जी को पेश करेंगे अन्नू मल्लिक की साज और संगीत पर। वन ऑफ द पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग ये दोनों मिलकर गाएंगे और गीत लिखा गया है इंदवर जी के कलम से। फिल्म का नाम नजायज और नजायज इस ऐट प्रख्तार 1995। फिल्म का जो डायरेक्टर है महेश भट्ट और अजय देवगन, जूही चावला, नजीरुद्दीन शाह, दीपक तिजोरी, रीमा लागू, गुलशन ग्रोवर, आशीष विद्यार्थी, इन सभी का एक फिल्म है जिसमें मैं देखता हूँ टिक्कू तालसानिया भी है। इस गीत के बाद ब्रेक, मेरे प्यारे से नॉल ऑफ ब्रेक के उस पार आप सभी से जरूर फिर मिलेंगे। अन्नू मल्लिक जी का ये आखिरी प्रोग्राम और बैक टू द फ्यूचर का आखिरी हिस्सा आफ्टर द ब्रेक।

सागर संग किनारे हैं और फूलों संग बहारे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, रोमांटिक सॉन्ग इंदवर का लिखा हुआ, मेरे प्यारे सुन वालों, दोनों ने मिलकर गाए हैं अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम विजय पाट और ये फिल्म 1994 का है। नीघंटिन फिर नहीं, ये फिल्म का एक और नगमा पेश करेंगे अभी कुछ देर में मेरे प्यारे सुन वालों। समीर कासमी जी का लिखा हुआ एक नगमा, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी विजय पाट। एंड वंस अगेन कुमार सानू अब की बार साधना सरगम के साथ मिलकर गीत गाएंगे और वो भी अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर एक बार मेरे प्यारे सुनो वालों। वखाना बैना बैना बैना हो रहे हैं 17 मिनट ओवर द क्लॉक फन अख। ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन, स्वागत करता हूँ आज इस बुधवार की रात्रि को जो आखिरी है मेरे प्यारे सुनो वालों, आखिरी बुधवार है इस महीने का। एंडा ने सत फॉर बै मेथ स्ट्रक्स फॉर बै मेथ अगस्तुस। अगले बुधवार नए साल में हूँ, नए महीना में हूँ और वो भी 2 तारीख है सितंबर। पेश करता हूँ नगमा कुमार सानू और साधना सरगम, सीने में दिल है।

सीने में दिल है और दिल में सनम, कुमार सानू और साधना सरगम, समीर कासमी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं अनु मल्लिक की साज और संगीत पर, और उससे पहले कुमार सानू और अलका याग्निक का नगमा इंदवर का लिखा हुआ हमने आप तक पेश किया था कि सागर संग किनारे हैं। दो रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों फ्रॉम द मूवी विजयपाद, और विजयपाद का जो मूवी है 1994 का है, 1994 डायरेक्टर फारूक सदीकी, अजय देवगन, तब्बू, सुरेश ओबेरॉय, रीमा लागू, गुलशन ग्रोवर, डैनी डिनजोंगपा का फिल्म। हेर एंड्रू और चित्रा जी दंकीवेल आपके ऐप के लिए मार्सब्रुक अम्सल्फीन से सुशीला चंद्रिका सिंह जी के ऐप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहनी कल्लू अत रोतराम दंकीवेल आपके ऐप के लिए, और रिफोनोडोलॉजी अ डनाह शुक्रिया धन्यवाद आपके ऐप के लिए। डनहेल्डर का इल्से रामदयाल को भी हम धन्यवाद कहेंगे, दंकीवेल आपके ऐप के लिए। आईफी जहांगीर शुक्रिया दंकीवेल एटम्सडम आईफी जी दंकीवेल आपके ऐप के लिए। रोटरडम का राकेश और नताशा दंकीवेल आपके ऐप के लिए। एन एच सी तरवीर खलिक टाइट आप लोगों के टाइन भैया टोनी इसरी दंकीवेल आपके ऐप के लिए। एंड यू हैड अ ग्रेट कैच या लूर्सर बेटी जी आठ क्रोनिंग दंकीवेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए। अम्सटरडम का सुनील भैया को भी हम दंकीवेल धन्यवाद कहेंगे ऐप करने के लिए। मफराव एंड मनेर बिहारी जी आठ ब्रेडा आप को भी धन्यवाद हम कहते हैं ऐप के लिए। और दनाह में रहते हैं लेकिन इस वक्त सूरीनाम में है लेकिन वहां भी सुन रहे हैं प्रोग्राम। मिक दंकीवेल मिक आपके ऐप के लिए शुक्रिया। एंजॉय सूरीनाम एंड ब्रिंग सूरीनाम बेच हीर। मेरे प्यारे सिनोलो हम आपको ले चलते हैं अभी एक मूवी से, एक और मूवी से दो नगमाएं निकालेंगे। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं 1995 का फिल्म टक्कर से गीत निकालेंगे, एक नगमा रोमांटिक सॉन्ग माया गोविंद जी का लिखा हुआ जो कुमार सानू गाकर सुनाएंगे अनु मल्लिक के साज और संगीत पर। आंखों में बसाया था तुम्हें, दिल में छुपाया था तुम्हें।

आंखों में बसाया था तुम्हें, दिल में छुपा लेंगे। कुमार सानू की आवाज, मेरे प्यारे सुनो, माया गोविंद का लिखा हुआ ये नगमा अनु मलिक के साज और संगीत पर सानू जी ने गीत को गाकर सुनाए हैं। फिल्म का नाम टक्कर, मेरे प्यारे सिन वालों 1995 का फिल्म, भारत रंगचाड़िया इनका डायरेक्ट किया हुआ मूवी, और सुनील शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, नाजीरुद्दीन शाह, शाफी मामदार, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह, इन सभी का फिल्म है जिसमें तिक्कू तलसानिया भी है और मोहन जोशी। वादा के मुताबिक, मेरे प्यारे से नौलो, एक और मूवी है जिसमें से दो नगमाएं निकालेंगे। फिल्म का नाम है गुंडा राज और ये भी 1995 का फिल्म है। पहला गीत जो निकालेंगे मेरे प्यारे से नौलो, कुमार सानू और अलीशा चनाई का एक नगमा एक निगाह में, ये गीत जो है सफर गोराखपुरी जी ने लिखा, और उसके बाद में कुमार सानू और साधना सरगम का एक नगमा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ जी, और वो नगमा समीर कासमी जी का लिखा हुआ नगमा है। संगीतकार ऑफ कोर्स जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं अनु मलिक, और दोनों नगमाएं आगे पीछे सेवा में पेश करता हूं। हियर ऑन यू आर

दो ब्यूटीफुल नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों, मुझे तुमसे मोहब्बत है, जो अभी आप सभी ने सुने हैं, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज, और उससे पहले ना जाने एक निगाह में अलीशा चनाय कुमार सानू के साथ मिलकर गीत गाए। सफर गोराखपुरी जी का लिखा हुआ ये दोनों नगमाएं, और संगीतकार वो जो जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, अन्नू मलिक जी। फिल्म का नाम गुंडा राज मेरे प्यारे सुनने वालों, और मूवी 1995 का है, 1995। और मैं देखता हूँ फिल्म का जो डायरेक्टर है गुड्डू धनोआ, जी हाँ गुड्डू धनोआ, और अजय देवगन, काजोल, अंजलि झट्टर, मोहन जोशी, शरद सक्सेना, आसरानी साहब जी, और कौन है, मोनिश बैल, अमरीश पुरी, बीना और देवन वर्मा का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, वक्त तो कुछ ऐसा निकला कि मैं देख रहा हूं तो आखिरी नगमा है जो सेवा में पेश करना या कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद में वक्त इतनी कम है तो मैं क्या कहूं। और गाने कुछ लंबा ऐसा है, सेव मिनट मेडन, सेव मिनट या दन खातधार्त। आखिरी गीत पेश करने से पहले मेरे प्यारे सुनो, आप सभी को फिर एक बार हम इतला दें कि आज ही आखिरी प्रोग्राम था अन्नू मलिक जी का, अभी आखिरी गीत भी पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर में। अगले हफ्ते 2 तारीख सितंबर, नए महीना का पहला बुधवार, फिर एक बार पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर, और वो दिन हम एक और मशहूर कलाकार का प्रोग्राम सजाएंगे बनाएंगे। और एक रीत नीत मिसकिन है पिकर तुई प्रोग्रामस एक डेंक सेल्फ, तो वो कौन है, फिलहाल तो 2 तारीख को हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल एक स्पेशल प्रोग्राम दिल की आवाज बनाने चले आएंगे, प्रोग्राम अलग से होंगे ओमदात, नॉर्मली तो हम ऐसे प्रोग्राम नहीं बनाते, लेकिन कल जरूरी है वो प्रोग्राम बनाना। और दिल की आवाज 8 बजे से रात्रि में 11 बजे 3 घंटे लगातार आपका सेवा में हम रहेंगे विद रोमांटिक सॉन्ग्स और डर भरे नगमाएं। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से आप सभी ने आज साथ दिए हैं, कल भी भरपूर मेरा साथ देंगे। और शनिवार के बाद जो है तो एक अलग सा प्रोग्राम भी होंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो से आप सभी का प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर सजाएंगे बनाएंगे। और इखारा नाफिन टू विस्ल मेथ कुलीखा लॉयड महावीर, जो ब्रासा फेस्ट पर होंगे जिया इवेंट सेंटर डनाग में, जो वहाँ लाइव आप सभी को एंटरटेन भी करेंगे। वर्षैलक मेरा आर्टिस्ट दीदार सैन एंड नटूलक मेट मोए इंटरव्यूज एंड दन गीव लॉयड इट वेर ओवर आ मै एंड गाइक फर्दर मेट सैटरडे नाइट फीवर। तो ऐसे हमने सोचा है प्रोग्राम बनाने का ये हफ्ता, और उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से भी सजाएंगे बनाएंगे, आज जिस तरह से आप सभी ने साथ भी दी है, पसंद की है, उसी तरह आप भी ज्वाइन करेंगे। मेरे प्यारे सुनो वालों, आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ, फिल्म का नाम है नाराज, और नाराज का एक नगमा फाइज अनवर जी का लिखा हुआ कुमार सानू की आवाज में पेश करने जा रहे हैं अन्नू मलिक, ऑफकोर्स संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, और महेश भट्ट जी का एक डायरेक्ट किया हुआ ये मूवी है 1994 नाराज 1994 मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, गुलशन ग्रोवर, इन सभी का एक फिल्म है जिसमें सोनाली बेंद्रे भी है, कुणाल खेमू और अवतार गिल। मेरे प्यारे सुनो लोग, गीत चलाने से पहले आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: मैं सुनाता हूँ तुझे

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

अभी शुरू होने वाला है उजाला रेडियो के जरिए कॉफी चाय मेरा शो, जरूर आप सुने हेडलाइंस वहां vandaag. आज का समाचार, आने वाले दिनों के बारे में समाचार, natuurlijk luchtige onderwerpen met Anand Chandrika Singh, zometeen in Coffee Chai Middagshow.

Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. और तू जाने तो दिल क्या करे, दिल कुछ ना कर सकेगा। तू ना जाने कब कैसे कहाँ किस जगह पर किसी से प्यार हो जाए। You wait a night.

You are Ujala Radio. ये हैं हर कामकाज के लिए चेक ऑन द वेबसाइट ujala.nl एंड जो भी कामकाज आपको दिलाना है स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl मोई से रहिए.

चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कद

नन्नी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में।

अब से मुर्गी पालेगी। बच्चे काली बिल्ली के, अब से मुर्गी पालेगी। बच्चे काली बिल्ली के, लड़ना भिड़ना बात बुरी, कहे से आने दिल्ली के। क्यों वो गोली खाए पाए जो लड्डू तिल्ली के। चली लड़ाई भारी रे, टल टलम टम टलम टल, चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल।